0: ये तेरी सौत है।
1: ये कौन है?
0: मेरी मौत है।
1: मैं कौन हूँ?
0: महबूब है।
1: मैं कौन हूँ?
0: तू खूब है।
1: ये सच नहीं ये झूठ है, ये सच नहीं ये झूठ है।